जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा। टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से आज।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा, उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं नबील. और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. आज के शो में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट से एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, विंटर ब्रेक से पहले पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स पर तेज बहस होने के आसार हैं, जहां ऑपोजिशन इन बदलावों के सख्त विरोध में है. इसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कुछ खास खबरें. फिर सुनेंगे एक खास रिपोर्ट रीजनल ऑस्ट्रेलिया से, जहां इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स सिर्फ शॉपिंग का जरिया नहीं बल्कि कल्चर और कम्युनिटी कनेक्शन का भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा या ब्रिज बन रहे हैं. शेपर्टन के विनय कुमार अपने स्टोर के थ्रू इसी कल्चरल रोल को समझाएंगे. और अंत में एक आखिरी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की, जिसमें हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में फंड रेजिंग के रूल्स कैसे काम करते हैं, चाहे आप चैरिटी के लिए डोनेट कर रहे हों या खुद फंड रेज कर रहे हों. क्या कैसी गाइडलाइंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके और ढेर सारे गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे. लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं न्यूज़ फ्लैश. बुधवार 24 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा है कि उन्होंने पावर कंपनी से पूछा है कि 1 जुलाई से कुछ प्राइसेस क्यों बढ़ने वाले हैं और क्या ये मिसकंडक्ट लॉस का उल्लंघन है. एनर्जी रिटेलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए नोटिसेज में जुलाई से रेट्स बढ़ने का संकेत दिया गया है, जिसमें कुछ उपभोक्ताओं के लिए डेली फिक्स चार्जेस में 86% तक बढ़ोतरी शामिल है. ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर के 2026-27 के फाइनल ऑफर के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में हाउसहोल्ड्स के लिए कीमतों में लगभग 10% तक कमी आने की उम्मीद थी. क्रिस बोवेन ने कहा है कि उन्होंने रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन से जांच करने को कहा है कि क्या किसी तरह का लीगल ब्रीच हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में मई महीने के लिए एनुअल इन्फ्लेशन साल दर साल 4% दर्ज की गई है, जो पहले 4.2% थी. ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सालाना इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा योगदान हाउसिंग का रहा, उसके बाद फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और ट्रांसपोर्ट का स्थान रहा. ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन, जिसे सेंट्रल बैंक का प्रमुख इंडिकेटर माना जाता है, 3.6% रही है, जो अप्रैल 2026 तक के 12 महीनों में 3.4% थी. सोशल सर्विसेज मिनिस्टर तानिया पिल्बर्सेक ने कहा है कि पेड पेरेंटल लीव ऐसी पॉलिसी है जो पॉलिन हैंसन के हाथों में सुरक्षित नहीं रहेगी. पॉलिन हैंसन ने पेड पेरेंटल लीव को लेकर अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में दिए गए अपने पहले एड्रेस के दौरान इसके खिलाफ बोलने जैसा संकेत दिया था. क्वींसलैंड की सेनेटर ने कहा है कि उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है और उनका इसे ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है. 21 जुलाई से गवर्नमेंट फंडेड पेड पेरेंटल लीव को 120 दिनों से बढ़ाकर 130 दिनों तक किया जाएगा. तानिया पिल्बर्सेक ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि लेबर ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया की पेड पेरेंटल लीव स्कीम शुरू की थी और इसे सुरक्षित रखना जरूरी है. न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने कहा है कि राज्य के बजट में घोषित कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर्स से मोटरिस्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स को फायदा मिलेगा. $561 मिलियन के ट्रांसपोर्ट पैकेज के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेस को 1 साल के लिए फ्रीज किया जाएगा और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में $100 की कटौती की जाएगी. लगभग 1 मिलियन मोटरिस्ट को भी टोल खर्च की मैक्सिमम वीकली लिमिट $60 से घटाकर $50 करने का लाभ मिलेगा. क्रिसमस ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ये फैसला लिया गया है. यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि HIV एड्स के खिलाफ दशकों में हुई प्रगति इंटरनेशनल फंडिंग में तेज कटौती के कारण खतरे में पड़ सकती है। 2004 में अपने पीक के बाद से एड्स से जुड़ी मौतों में 70% की कमी आई है, लेकिन UNAIDS यानी जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स की प्रोग्राम डायरेक्टर विनी ब्यानिमा ने कहा है कि लो इनकम देशों में हाई इन्फेक्शन रेट्स वाले HIV प्रोग्राम्स पर पिछले एक साल में डेवलपमेंट एड में भारी कटौती का असर पड़ा है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कॉन्डम्स के लिए फंडिंग 90% से ज्यादा कम कर दी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि HIV संक्रमण के लिए सबसे अधिक वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे वुमेन एंड गर्ल्स, गे मेन, ट्रांसजेंडर पीपल और सेक्स वर्कर्स का क्रिमिनलाइजेशन भी वायरस के फैलाव को बढ़ा रहा है। और अब खबर भारत से। इंडिया और अमेरिका के बीच प्रपोज ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर अपने पहले ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा पर हैं, जहां वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस और ट्रेड बैरियर्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि एग्रीकल्चर, डिजिटल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कुछ विषयों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने समझौते को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज़ फ्लैश के बाद अब वक्त हो गया है हमारे शो की पहले रिपोर्ट का। और ऑस्ट्रेलियाई फेडरल संसद में नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे बड़े कर सुधारों पर तेज बहस होने की संभावना है, और विपक्ष इन बदलावों का कड़ा विरोध कर रहा है। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी भव्या पांडे की ये रिपोर्ट।
3: नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फेडरल संसद शीतकालीन अवकाश से पहले अपने अंतिम दो हफ्ते के सत्र के लिए लौट आई है। आने वाले दिनों में संसद में दो बड़े मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, संपत्ति निवेश से जुड़े कर सुधार और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में प्रस्तावित बदलाव। सरकार का कहना है कि ये कदम आवास की उपलब्धता बढ़ाने और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और ग्रीन्स पार्टी इनका विरोध कर रहे हैं। इस बीच इन प्रस्तावों के असर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। फेडरल संसद के इस सत्र में सरकार की प्रस्तावित कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म्स योजना सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गई है। लेबर सरकार नेगेटिव गियरिंग को जुलाई 2027 से केवल नए मकानों तक सीमित करना चाहती है। साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स पर मिलने वाली मौजूदा 50% छूट को महंगाई आधारित व्यवस्था से बदलने का प्रस्ताव है। ऐसे में विपक्षी नेता एंगस टेलर ने एक बार फिर इन प्रस्तावों का विरोध किया है।
4: We've said from the start they should be axed. Right from the beginning we've said that they should be it's not a we don't need a carve out. We need an axe. And we've said that from the start.
3: सरकार का कहना है कि छोटे व्यवसायों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई एक्सेप्शंस का प्रावधान किया गया है। $10 million तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स रियायतें मिलती रहेंगी। कुछ नवाचार आधारित स्टार्टअप संस्थापकों को भी विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे में उद्योग मंत्री टिम एयर्स का कहना है कि बजट में शामिल विभिन्न उपाय स्मॉल बिजनेसेस की उत्पादकता यानी productivity और विकास यानी development को बढ़ावा देंगे।
5: All of the measures in the budget, when you put them together, are a very substantial package. In my area, supporting research and development, the tax incentive there, strengthening those measures, loss carryback, instant asset write-offs, all of these measures support dynamism and productivity in our small business sector.
3: वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये कर सुधार निवेश और आर्थिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संपत्ति बाजार के हालिया आंकड़ों ने भी बहस को और तेज कर दिया है। सप्ताहांत में लगभग 1900 मकान नीलामी के लिए आए, लेकिन केवल 47.4% की ही बिक्री हो पाई है। ये अप्रैल 2020 के बाद से सबसे कम ऑक्शन क्लियरेंस रेट माना जा रहा है। विपक्ष के उपनेता जेन ह्यूम का कहना है कि बाजार में अनिश्चितता
6: बढ़ गई है.
7: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
6: हालांकि सरकार का तर्क है कि आवास की कीमतों में लगातार तेज वृद्धि ने युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना दिया है. सामाजिक सेवा मंत्री टानिया प्लेबरसिक का कहना है कि सरकार घरों की कीमतें गिराना नहीं चाहती बल्कि उनकी वृद्धि की रफ्तार को नियंत्रित करना चाहती है.
8: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own. It used to be that the average house cost about 4 years of the average wage. Now it's about 8.5 years of the average wage. People just can't keep up with that because they've been competing with property investors for those houses.
6: उधर संसद में दूसरा बड़ा विवाद NDIS सुधारों को लेकर है. सरकार का कहना है कि योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाने जरूरी हैं. प्रस्तावित सुधारों के तहत बड़ी संख्या में लोगों को राज्य और क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों की ओर भेजा जा सकता है. हालांकि ग्रीन्स पार्टी इन बदलावों का कड़ा विरोध करती नजर आई है. ग्रीन सीनेटर जॉर्डन स्टील जॉन ने संसद में सरकार के प्रस्तावों को अमानवीय बताया है.
9: लेबर्स एनडीआईएस बिल इज जस्ट क्रूल. इट शुड बी स्क्रैप्ड. इट शुड बी विथड्रॉन. इट शुड बी रिमूव्ड. इट शुड बी टॉर्न अप. Quite frankly, loaded into a cannon, and if I had my way, fired into the sun.
6: उनका कहना है कि प्रस्तावित कटौतियां हजारों लोगों और कई नौकरियों को प्रभावित कर सकती है.
9: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
6: विपक्ष भी इस मुद्दे पर अधिक जांच और समीक्षा की मांग कर रहा है. विपक्षी नेता एंगस टेलर का कहना है कि एनडीआईएस को टिकाऊ और प्रभावी बनाए रखना जरूरी है.
4: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable, and it clearly hasn't been.
6: आइए जानते हैं NDIS प्रदाता हीना सिन्हा चुंग का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है.
10: That industry is looking after the most vulnerable people of our society. तो अगर हम उनकी जो lived realities हैं, उनको अगर हम इसमें consider नहीं करेंगे, तो ना ही government कोई outcomes achieve कर पाएगी, ना ही providers. So number one is clarity. We need more clarity. कब, कैसे, क्या changes लाई जाएंगी? और दूसरी चीज़ ये कि इन चेंजेस को अफेक्ट होने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स को चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, या फिर वो सिर्फ स्कीम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं. वो ये नहीं सोच रहे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं, वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे अपना केयर.
6: इन दोनों प्रमुख मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी राज्य और क्षेत्रीय नेताओं के साथ ईंधन सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं. सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर मिलने वाली एक्साइज छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि जुलाई से मौजूदा 32 सेंट प्रति लीटर की छूट घटाकर 16 सेंट प्रति लीटर कर दी जाएगी. अब संसद के इस अंतिम पखवाड़े में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने प्रमुख सुधारों को कानून का रूप दिलाने में कितनी सफल रहती है. SBS न्यूज के लिए एंजेलिका वेट की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे.
11: इस विज्ञापन को एक नाटी प्रमाणित दुभाषीय ने अनुवादित किया है.
12: This ad is interpreted by a Naughty certified interpreter.
11: एक प्रमाणित दुभाषीय के साथ आप जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में ठीक वैसे ही कह सकते हैं.
12: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
11: और आपकी कही हुई बात प्राइवेट रहती है और बदलती नहीं है.
12: And what you say stays private and unchanged.
11: क्योंकि हम सबका ये अधिकार है कि हमारी बात को समझा जाए।
12: Because we all deserve to be understood.
11: एक नाटी प्रमाणित दुभाषीय के लिए पूछें। nati.au/interpreter पर और अधिक जानकारी पाएं।
13: SBS Sport, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
14: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
15: SBS ऑडियो,
13: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
16: याद दिया, चुंबे हालम।
17: SBS chill,
18: SBS pop Asia, non-stop Asian pop.
19: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS हिंदी उपलब्ध करवाता है।
20: Far from the partisan politics.
13: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें या फिर
15: sbs.com.au/audio।
2: SBS हिंदी पर एक बार हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे अगले करंट अफेयर सेगमेंट का। तो आइए सुन लेते हैं इंडिया रिपोर्ट जो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं गौरव, और इसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें।
21: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चुनौतियों से मिलकर निपटने पर सहमति बनी है। नई दिल्ली में मंगलवार को समाप्त हुई इस बैठक में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, साइबर, सप्लाई चेन, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
22: The BRICS NSA meeting is happening over two days, 22nd and 23rd. On 22nd, that is yesterday, National Security Advisor, he had bilateral meetings with several of his counterparts, including from Iran, Ethiopia, Brazil, China, and South Africa. The agenda is how do these BRICS, the BRICS countries together, they deal with non-traditional security challenges that the world confronts. Also, they would discuss the evolving nature of national security challenges and the role of new technologies in the emerging security threats. There are other elements also that was part of the discussions.
21: अमेरिका ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका सकारात्मक असर भारत आने वाले जहाजों पर भी पड़ा है। रणधीर जायसवाल इस बारे में बताते हैं।
22: 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन MOU हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक LPG टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है।
21: और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखरती जा रही है। पार्टी पर बागी विधायकों और नेताओं ने अपना दावा ठोका है। चुनाव आयोग में जाकर पार्टी चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया गया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बागी गुट के नेताओं पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री अग्नि मित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा,
15: आप जो बोते हैं लगाते हैं उसका फल उसी तरह आपके पास आएगा। आप ममता बनर्जी और इंडी अलायंस के पार्टनर जिस तरह से भारत विरोधी जो क्षमता उसको जैसे सपोर्ट किए थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आज वही जो सपोर्ट किए थे आज ममता बनर्जी का टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक केस स्टडी हो गया कि एक पार्टी जो 15 साल इतना ओडासिटी, इतना उद्धत्व, इतना एरोगेंस और इतना उन्नयन करने का जो प्रॉमिस दिए थे कुछ हुआ नहीं, आज वही पार्टी एक महीना के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है।
21: मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप मीडिया के जरिए सामने आया है। उज्जैन के कई जमीन सौदों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इस खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा,
16: राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है।
21: मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी कहते हैं,
16: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर, क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या?
21: मोहन यादव के विरुद्ध षड्यंत्र भाजपा ही कर रही है, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है।
17: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें, वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
21: जमीन घोटाले को लेकर सारे आरोपों को भाजपा ने बेबुनियाद बताया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का बचाव करते हुए कहा कि झूठे आरोपों के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर भाजपा की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अयोध्या राम मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में व्यापक गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। इसके बाद इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी SIT का गठन किया गया था। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। चढ़ावे की चोरी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरा है। इधर भाजपा ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। भाजपा का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इंडिया रिपोर्ट के बाद आज के शो का सवाल पूछ लेते हैं। और क्योंकि हर तरफ स्पोर्ट्स का पागलपन चढ़ा हुआ है, फीफा हर जगह चल रहा है और विश्व कप हर कोई देख रहा है, तो आप ये बताइए कि अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपकी कौन सी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी रही है जो आपको देख के बड़ा मज़ा आया है? तो 0439-799-767 पर मैसेज करके बताइए आपकी फेवरेट बॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी। और कई मूवीज़ बनी है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग और कई और खेल पर मूवीज़ आई हैं। तो हमें रिकमेंड करिए आपकी कौन सी वॉच लिस्ट है 04397997667 और अपना नाम भी ज़रूर लिख के भेजिएगा। चलिए अब ले लेते हैं एक एड ब्रेक। एड ब्रेक के बाद वापस आकर आपके लिए प्ले करेंगे कुछ गाने और गानों की शुरुआत होगी और फिर कुछ और रिपोर्ट। सुनते रहिए SBS हिंदी।
0: फुटबॉल दुनिया को एक साथ लाता है और वियटजेट भी। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन या पर्थ से सीधे वियतनाम के लिए उड़ान भरें, फिर एशिया और यूरोप के लोकप्रिय स्थलों के लिए अपनी यात्रा जारी करें। हो ची मिन सिटी से कनेक्टिंग फ्लाइट्स का हमारा विशाल नेटवर्क एशिया और यूरोप की यात्राओं को आसान बनाता है। टोक्यो, सोल और प्राग की दिलचस्प सड़कों, बाली के गर्म समुद्री तटों या बैंकॉक, टैपेई और हांगकांग के जीवंत बाजारों में घूमने का आनंद उठाएं। ऑल इन एक तरफा टिकट केवल $199 से शुरू। vietjetair.com और vietjet की मोबाइल ऐप में आकर्षक ऑफर्स के बारे में जानकारी पाएं। आइए vietjet के साथ उड़ान भरें।
1: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS

0: हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
1: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के शो का हमने ये सवाल पूछा था कि आजकल हर तरफ स्पोर्ट्स का एक क्रेज़ बना हुआ है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी कौन सी थी और जो आप हमेशा देखना पसंद करते हैं? तो दो मैसेजेस हमारे पास आए हैं। पीयूष जी लिखते हैं कि लगान मूवी उनकी फेवरेट है। और एक और मैसेज आया है मनन का फ्रॉम मेलबर्न, वो लिखते हैं कि माय फेवरेट स्पोर्ट मूवी इज़ JJWS, आई थिंक जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं, और ये दोनों आमिर खान की मूवी हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैंने अभी इंटरव्यू देखा था कुछ दिन पहले, जब लगान मूवी की 25 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा था और इसके राइटर डायरेक्टर लिरिसिस्ट सब एक साथ आए थे, और उसमें जावेद अख्तर ने बताया कि जो मूवी का गाना है ओ रे छोरी, उसमें जो बीच में इंग्लिश पार्ट आता है उसके लिए उन्होंने अपने जो बच्चे हैं फरहान अख्तर और जोया अख्तर, उनसे वो पार्ट लिखवाया था। और ये चीज़ उस इंटरव्यू में बताई गई थी। तो चलिए आप भी बताइए आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है बॉलीवुड से। 04397997667 हमारा नंबर है, और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस गाने के बाद। सुनते रहिए SBS हिंदी।

SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नबील और इस वक्त हमारे समय हो गया है अगले रिपोर्ट का। क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ग्रोसरी स्टोर केवल सामान बेचने का काम नहीं करती, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनती है। इस पॉडकास्ट में शेपर्टन के ऐसे ही एक

0: ग्रोसरी स्टोर के मालिक विनय कुमार बताते हैं कि उनका स्टोर किस तरह विभिन्न समुदायों को जोड़ने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में योगदान देता है। आइए सुनते हैं नताशा कौल की ये रिपोर्ट।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कौल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलिया में और कहीं आप गए हो ना हो, लेकिन भारतीय ग्रॉसरी स्टोर जरूर गए होंगे। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर भारतीय समुदाय का ऑस्ट्रेलिया में एक अभिन्न हिस्सा है। इन दुकानों के पीछे अक्सर ऐसे छोटे व्यवसायी होते हैं जो सुबह से लेकर देर रात तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि समुदाय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज हम ऐसे ही एक ग्रॉसरी स्टोर के मालिक से जुड़ रहे हैं जो अपने मित्र शिरीष के साथ मिलकर विक्टोरिया के रीजनल क्षेत्र शेपर्टन में एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चलाते हैं। लेकिन ये दुकान केवल रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराने का केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और खाने के स्वाद को जीवंत बनाए रखने का भी माध्यम है। साथ ही ये स्थानीय भारतीय समुदाय को जोड़ने, नए प्रवासियों को अपनापन महसूस कराने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए मिलते हैं विनय से जो शेपर्टन में एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चलाते हैं।
2: हाँ, मेरा नाम है विनय कुमार बिरदराजू और मैं हूँ बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद इन इंडिया एंड वी मूव टू इन ऑस्ट्रेलिया बैक इन 2004 एज ए स्टूडेंट। यस, मैं अपना मास्टर्स करने आया था यहाँ पे। दैट वॉज बैक इन 2004। आई स्टडीड इन लेट्रोब यूनिवर्सिटी इन बंडूरा। तो पढ़ाई के बाद मैं जॉब कर रहा था और ऑप्टस के साथ एक डेढ़ साल काम किया था। उसके बाद मेरा PR हो गया एंड देन मैं मूव हो गया था सिडनी को। सिडनी में भी एज एन IT एक्सपर्ट मैंने ढाई साल काम किया। उसके बाद में 2009 में हम शेपर्टन मूव हो गया अपने, क्योंकि ना मेरा था कि पहले से ही मन कि लाइक हम खुद का अपना कुछ खुद करें। तो हमने यहाँ पे शेपर्टन में मूव हो गया था, स्टार्टिंग आवर फर्स्ट वेंचर बिजनेस में पेट्रोल स्टेशन के साथ।
1: अच्छा।
2: जी, तो उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे शेपर्टन अच्छा लगने लग गया एंड सारे यहाँ जब हम आए थे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी कम्युनिटी थे, मलयाली कम्युनिटी भी थे। तो वी वर लाइक नेवर लेफ्ट आउट ऑफ, कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम कंट्री कहीं इंडिया छोड़ के आए थे। यहाँ पे पंजाबी बहुत अच्छे थे, यहाँ पे हमें उन्होंने अपनाया था। तो हमने सारे कम्युनिटी को मिला एंड वी लाइक द प्लेस शेपर्टन। उसके बाद में धीरे धीरे से हमने पेट्रोल स्टेशन के बाद इंडियन शॉप लिया था जो हम अभी भी रन कर रहे हैं। पेट्रोल स्टेशन तो बेच दिया हमने 6 साल के बाद, बट लाइक इंडियन शॉप हम चला रहे थे लास्ट 15 ईयर्स। तो ये इंडियन शॉप ने इस्टेब्लिश किया था हमारे से पहले एक पंजाबी कम्युनिटी ने। ये शॉप 15 साल से अच्छा चला रहा है हम यहाँ पे। उसके बाद में हमने एक इसके बाद में ये हमारा दूसरा वेंचर हो गया। उसके बाद में कम्युनिटी के सपोर्ट से और अपनी ये सारे के साथ हमने अपनी करियर में आगे भी और 2-3 बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था। सो इट्स बीन रियली गुड सो फार शेपर्टन जर्नी हमारे साथ रीजनल टाउन में।
1: विनय, और कितने इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं शेपर्टन में? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेलबर्न में तो बहुत सारी हैं, लेकिन रीजनल एरिया जैसे शेपर्टन है, वहाँ कितनी शॉप्स देखने को मिलती हैं आपको?
2: जब हम आए थे तो यही एक शॉप था और एक था मिडल ईस्ट का शॉप, एक टर्की शॉप, बट इंडियन शॉप तो वैसे कुछ नहीं है। बट हमारे आने के बाद कम्युनिटी बढ़ रहा था तो 2-3 शॉप्स और आए थे, बट लाइक वो अभी फ़िलहाल नहीं है। वो अपने फॉर सम रीजंस दे हैव बंद कर दिया, मगर हमारा एक ही शॉप है जो लास्ट 15 ईयर्स से कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। उसके बाद में अभी रिसेंटली कोविड के बाद क्यूनल अभी और भी इंडियंस फ्रॉम हर कॉर्नर से आ रहे थे यहाँ पे। तो एक और अभी साउथ इंडियन शॉप मलयाली कम्युनिटी के लिए भी खुला है। तो बट लाइक प्रीडोमिनेंटली यही जो शॉप है जो सब आते हैं यहाँ। पर्सनल के तौर पे हम कुछ इंडिया से मंगाते नहीं हैं, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है बेसिकली टू इंपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया थोड़ा सा हेक्टिक है, कि रीज़न बीइंग आपको बहुत सारे कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है और आपके ट्रांजिट के टाइम ही इतना बड़ा है कि लाइक आप वेट करते रहोगे अपने नेक्स्ट कंटेनर का। और एक शॉप के लिए इंडिया से मंगाना थोड़ा वेरी बिग चैलेंज है। बट इन सेइंग दैट कि हम मेलबर्न से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो बड़े लेवल पे मंगाते तो हम उनसे ख़रीदते हैं। सो मेलबर्न से ही मेरा हमारा सामान जो भी है एवरीथिंग लाइक फ्रोजन ड्राई चिलर एवरीथिंग हम मेलबर्न से ही मंगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू. और या
1: विनय, कॉस्ट ऑफ लिविंग का असर कैसे पड़ रहा है आपकी स्टोर पर या यहाँ के समुदाय पर?
2: देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली यस बढ़ रही है और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशंस एंड ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया और सामान इंडिया से आने मेलबर्न तक आने के लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है क्योंकि जो कंटेनर्स है वो पोर्ट्स पे रुक रही है बिकॉज देयर नॉट इनफ स्पेस इन द पोर्ट्स एंड स्टफ. बट हाँ इन सेइंग दैट लाइक सारे के चीज़ भी प्राइसेस भी बढ़ गया और कस्टमर थोड़ा स्ट्रेस में है डेफिनेटली इन सेइंग दैट लाइक यू नो द स्पेंडिंग जो है थोड़ा कम हो गया. बट हमारा कोशिश यही हो रहा है कि लाइक हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके जितना ज़्यादा सामान मतलब बल्क में उठाए तो फिर हमें सस्ता पड़े और हम कस्टमर को आगे सस्ता दे सकते हैं. तो ये चैलेंज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस है जो हम हर मंथ हर वीक ऑन वीक बेसिस पे जा रहे हैं. जैसे अभी लास्ट टू मंथ से जो ग्लोबल की सिचुएशन कोविड के बाद जो बिगेस्ट क्राइसिस अभी लग रहा है कि दामें बहुत ज़्यादा बढ़ गया नियरली हम सो तेल पे ज़्यादा पड़ा है. ओके और जो जैसे दालें हो गया चावल भी हो गया और क्योंकि ना ये सारे जो शिपिंग कॉस्ट जो होता है ना वो एक्सट्रीमली बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस. तो उसके हिसाब से और मार्केट में एक सिचुएशन ऐसा ही है कि लाइक इंटरेस्ट रेट पे भी बढ़ गया. सो दैट्स अनदर रीज़न वेयर कस्टमर्स आर लाइक यू नो वेरी कॉशियस स्पेंडिंग कर रहे हैं अभी.
1: अच्छा मैं देख रही हूँ आपकी दुकान पे बहुत सारा सामान है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या बिकता है?
2: मोस्टली बिकॉज इट्स ए प्रीडोमिनेंट पंजाबी कम्युनिटी है शबडन में और मोस्टली वेजिटेरियन से दालें बहुत ज़्यादा बिकता है. दालें बहुत मतलब आटा तो है ही है मगर जो इंडिया से जो आटा आता है थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द शिपिंग कॉस्ट. अभी जो लोकल आटा है वो तो अवेलेबल है ही है तो आटा तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट हाई सेलर है. बट अदर देन आटा द नेक्स्ट वन इज़ लेंटिल्स. दालें बहुत ज़्यादा बिकता है और पंजाबी स्पेशली मोस्टली वेजिटेरियन ही है तो फिर उनको तो चाहिए चाहिए कि दालें तो रहना ही है अपने घर में. एक नहीं दो नहीं हर तरह की दाल रहनी चाहिए उनको. तो या उसके बाद में हो गया तो स्पाइसेस के मसाले के बिना तो इंडियन खाना बनते ही नहीं है. तो ये है. और नेक्स्ट आ गए तो स्नैक्स. जो इंडिया के जो स्नैक्स होता है वो यहाँ पे बनना मतलब इतने सारे नॉट सभी लोग बना सकते हैं तो फिर नमकीन हो गया मंचिंग हो गया ये सारे बहुत ज़्यादा बिकता है जी.
1: विनय, हर बिजनेस के अपने अपने चैलेंजेस हैं. आपके चैलेंजेस क्या रहे शेपर्टन में?
2: जब हम आए थे जब हम शॉप नया नया लिया तो थोड़ा हमारे तरफ से ही थोड़ा मुश्किल हुआ कि लाइक यू नो सभी क्योंकि ना हम साउथ इंडियन से और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली नॉर्थ इंडियन है तो हमें बड़ा दिक्कत हुआ कि लाइक यू नो चीज़ों को समझना कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते कि कौन से लैंग्वेज की बैरियर भी एक हो जाता है कि लाइक चलो हम हैदराबाद से थोड़े बहुत करके हिंदी तो जानते हैं बट लाइक थोड़ा है. मगर लाइक कम्युनिटी बहुत अच्छा साथ दिया हमने हमको और हम मतलब उन्होंने अपने लोग मान के हमको मतलब सिखाया बताया कि कौन से आइटम को कैसे हम यूज़ करते हैं.
1: देखा जाता है जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो पहचानते हैं कि ये भारतीय समुदाय से जुड़ा है.
2: एग्जैक्टली मैं उसके ना बड़ा एग्जांपल एक देता हूँ कि जब हमारा फेस्टिवल्स होता है एक्चुअली सभी लोग लगता है यार लाइक हम इंडिया छोड़ के आ गया परिवार को छोड़ के आ गया रिश्तेदारों को छोड़ के आ गया वो वाली बात है ही नहीं जो इंडिया में हम करते थे फेस्टिवल के टाइम पे. मगर जब आप यहाँ पे शेपर्टन में आए रह रहे हो ना तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि लाइक आप कुछ इंडिया वाली फीलिंग मिस हो रहे हो. सभी कम्युनिटी दिवाली पे इकट्ठा हो जाते हैं गुरुद्वारे जाते हैं पटाखे करते दिवस एक दूसरे को मतलब घर पे बुला लेते. सो देर इज़ लाइक ए फैमिली एटमोसफियर बहुत ज़्यादा है शेपर्टन में. जो अपने कम्युनिटी सारे अपने लाइक यहाँ पे आके वो एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बाउंड्री सभी मिट गया.
1: आपको बता दें ये साक्षात्कार हाल ही में SBS हिंदी टीम ने शेपर्टन की यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया था.
0: The एस बी एस हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नबील और अभी अभी आपने सुनी नताशा कॉल की रिपोर्ट रीजनल एरिया शेपर्टन से, कैसे एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो ना सिर्फ एक दुकान बल्कि कम्युनिटी को जोड़ने का भी एक जरिया बनती है। और आज के शो का जो हमारा सवाल था वो ये था कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी कौन सी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि लगान है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि जो जीता वही से अंदर। आप भी अपना मैसेज भेजिए 0439-799-767 हमारा नंबर है, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। और जब तक आपके मैसेजेस आते हैं अब वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद लेंगे एक एड ब्रेक और एक आखिरी रिपोर्ट और कुछ और गाने।

0: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
1: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
2: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
4: SBS Kickoff,
5: a new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now
5: on DAB Radio, the SBS audio app,
6: we got the game
4: online and SBS On Demand.
3: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया है हमारी शो के आखिरी रिपोर्ट का, और ये है SBS एग्जामिन्स का एक ख़ास अंश। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस पढ़ देते हैं। एक मैसेज आया है प्रणव का मेलबर्न से। वो लिखते हैं कि जादूकर जो नेटफ्लिक्स में हाल ही में आई थी, वो इट्स रिलेटेड टू सॉकर फुटबॉल, वो एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स मूवी है जो देख सकते हैं। और आपकी फेवरेट बॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है, 0439-799-767 पर अपने नाम के साथ ज़रूर अपना मैसेज भेजिए। और चलिए अब आपको आखिरी रिपोर्ट सुना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में ऑस्ट्रेलिया के फंड रेजिंग नियमों को समझते हैं। वो चाहे किसी चैरिटी में डोनेशन देना हो या ख़ुद पैसे जुटाने की कोशिश करना हो। इसे प्रस्तुत कर रही हैं आपके लिए अनीता ब्रार।
8: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
9: दान करना दिल के करीब होता है और इस काम में मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसे पता चले कि कोई फंडरेजर सही है या नहीं, और आप एक फंडरेजर कैसे सेटअप कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के फंडरेजिंग नियमों को समझने में मदद करेंगे। अब वो चाहे आप किसी चैरिटेबल काम के लिए डोनेशन देना चाहते हों या खुद पैसे जुटाने की कोशिश करना चाहते हों। SBS पर मैं हूँ अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया में फंडरेजिंग कानून को समझना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि हर राज्य और क्षेत्र में अपने फंडरेजिंग कानून होते हैं। फंडरेजर लोकल सरकार की मंजूरी और दूसरे कानूनों जैसे ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ और प्राइवेसी कानूनों के तहत भी आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन चैरिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कमीशन ACNC ऑस्ट्रेलिया का चैरिटी रेगुलेटर है, जो ये पक्का करता है कि रजिस्टर्ड चैरिटी सही तरीके से काम करे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन फंडरेजिंग कैसे की जाती है, इस पर इसका कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। ये हर राज्य या क्षेत्र पर निर्भर करता है। ACNC कमिश्नर सू वुडवर्ड बताती हैं।
10: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
9: ACNC के साथ registration अपनी मर्जी से होता है, लेकिन अगर कोई charity register में है, तो इसका मतलब है कि उसे not-for-profit status और good governance standards का पालन करने के लिए जांचा गया है. ACNC कमिश्नर वुडबर्ग का कहना है कि अगर कोई charity register में है, तो उसके credential check करना आसान है.
10: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
9: Sabhi registered charity donations ke liye tax detectable raseedein jari nahi karti. Justice Connect ki not for profit law service ki wakil Amy Williams batati hain.
11: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organization and it will very clearly state if an organization has DGR status.
9: Agar aapko kisi charity ke fundraising ke tareeke ko lekar koi chinta hai to aap ise apne rajya ya kshetra ke regulator ke samne utha sakte hain. ACNC कुछ फंडरेजिंग मामलों में भी दखल दे सकता है, जैसे कि कोई चैरिटी जमा किए गए सभी फंड का हिसाब ना दे. ACNC को मिली सभी शिकायतों की जांच की जाती है. हालांकि आपको बिना किसी और अपडेट के सिर्फ ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपकी शिकायत मिल गई है. अगर आपको किसी फंडरेजिंग स्कैम का शक है तो डोनेट करने से मना कर दें और अपने लोकल रेगुलेटर या नेशनल स्कैम वॉच सर्विस को scamwatch.gov.au पर रिपोर्ट करें. ऑनलाइन पैसे डोनेट करते समय ये जांच करना आवश्यक है कि आप किसी आधिकारिक वेबसाइट पर हैं. जल्दबाजी ना करें, शक वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें और फंडरेजर के क्रेडेंशियल अवश्य देखें. क्या होगा अगर कोई फंडरेजर आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे? पीटर हिल्स जोन्स पब्लिक फंडरेजिंग रेगुलेटरी एसोसिएशन के सीईओ हैं. ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो ऑस्ट्रेलिया में फेस टू फेस फंडरेजिंग करने वाली चैरिटी और फंडरेजिंग एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करती है. वो फेस टू फेस फंडरेजिंग स्कैम के लिए महत्वपूर्ण बातें बताते हैं.
12: इफ द इंडिविजुअल फंडरेजर ऑन द स्ट्रीट और एट योर डोरस्टेप isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
9: Face-to-face fundraisers, three mukhya tarah ke hote hain. Street fundraiser, डोर टू डोर और शॉपिंग सेंटर के अंदर काम करने वाले फंडरेजर. आप उनसे कुछ खास तरह के व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं.
12: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
9: अब अगर आप स्वयं किसी काम के लिए खुद पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? जस्टिस कनेक्ट की एमी विलियम्स कहती हैं कि आपको हमेशा अपने राज्य या क्षेत्र के रेगुलेटर से पता करना चाहिए कि आपको लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं और आपको किन नियमों का पालन करना होगा. हालांकि वो कहती हैं कि पैसे के लिए प्राइवेट अपील आमतौर पर fundraising कानूनों से regulate नहीं होती है.
11: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for, and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
9: अगर आप online crowdfunding appeal शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि ये एक regulated activity है. Williams online fundraiser के बारे में दो खास बातें बताती हैं. वे अलग-अलग fundraising कानूनों के तहत आ सकते हैं. उन्हें ये भी स्पष्ट बताना चाहिए कि फंड कहाँ जाएगा. दूसरे शब्दों में फंडरेजर का सही मकसद क्या है, ताकि दानकर्ताओं को गुमराह होने से बचाया जा सके.
11: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
8: ये एक SBS audio podcast था. Australia Explained के और दूसरे podcasts के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.
7: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं नबील और अब शो का अंत आ चुका है और हम इस आपके लिए प्ले करेंगे एक आखिरी गाना. इस गाने के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, इस वादे के साथ कि हम जल्द मिलेंगे एक नए शो में एक नए शाम. और तब तक सुनते रहिए SBS हिंदी और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करिए, ताकि हम आप तक कॉन्टेंट पहुँचा सकें.

0: non-stop Bollywood. Don't start.
1: The Bollywood session.
2: Don't start.
1: On SBS South Asian.
3: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Hollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

आस की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो। बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian.
2: Subscribe on YouTube.

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से
1: Your news from here and hits from home SBS South Asian

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.

0: वो जो पाँव के ऊपर पाँव को रखे और बैठे,
1: वो चट्टान जिस पे वो बैठे सिंहासन बन जाए, जो सिंहासन वो पलभर में वो चट्टान बन जाए,
0: वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखे।

0: भी उठो, पार्टी खत्म हो गई। चलो जो नहीं उठना तो फिर मैं भी सोने लगा। ओके भाई।
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
4: चले गए चले गए

हार को वो जा रहा है कोई शबेगम पुकार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बा।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।